जित हर प्रभ जापै सा धन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाण नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखै साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किश किया सोई जाने, ता का रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, बड़हंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लख्या पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिर जिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिर जिया तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तोन हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए महल रुनी दरबारे, रवो कंत मेलिहो सच्चे के गुण सारे, जल मल

जिन प्रयो जाता कर्म विदाता बोले अमृत बाणी। गुणवंतियां गुणसार है अपने कंत संभाल है ना कदे लगे विजोगो। सचड़ा पिरसा लाही है सब किश करना है जोगो। सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए। सात अन प्रेकै रंगरती विचों वाप गवाए। विचों वाप गवाए फिर काल ना खाए। गुरमुखी एको जाता कामनेश पुन्नी अंतर पिन्नी मिलिया जग जीवन दाता। शब्द रंग राती जो बन माती प्रेकै अंक समाए। सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए। जिनी अपना कंत पछाणिया हां तिन पूछो संतां जाए। आप छोड़ सेवा करी पर सचड़ा मिले सही सुवाए। पर सच्चा मिले आए साच कमाए। साच शब्द तन राती कदे नारांड सदा सुहागण। अंतर सही समाधि पर रहया पर पूरे वेखा दूरे रंग माने सही सुवाए। जिनी अपना कंत पछाणिया हां तिन पूछो संतां जाए। फिरो विशुनिया भी मिल है जे सदगुर लागै साचे पाए। सदगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा भाव गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख पाया। हो मैं गई पराती पिर निरमायल सदा सुखदाता नानक शब्द मिलाए। फिरो विशुनिया भी मिल है जे सदगुर लागै साचे पाए। वडहंस महला।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो न।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

जिचर कट अंतर है सासा, एक पालो खिन विसरै तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई, गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया सद ही, तेरे नाम विटो बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई, शब्द गुरदाता जित मन लाता, हर स्यो रहया समाई। शब्द ना जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम्मै वारो वारा, बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, तिस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई, करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई, सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करे प्रभु पावै, अंदर नाम वखाणे, भगता की सार करे आप राखे, जो तेरे मन भाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता, गुण कै गुणी समाणे, मन मेरे हर जियो सदा समाल, अंत काल तेरा बेली होवै, सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड कमावै, ना बूझै विचारे, निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै, हर जियो ले उबारे, आप सकाओ बहु भला कर जाणै, मन मुख मत ना काई, साधु जन की निंदा व्यापे, जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही, अंत गए पछताई, सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते, अंदन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चलै पाई, विछड़ चोटा खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै भाई, फिर पछोतावै, हर के दास सुहेले भाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूटै नाही, गुरमुख मुख द्वारा। कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै, मर जन्मै वारो वारा। हौ मेरा जग पलच रहया पाई, कोई न किसी केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज कर होए बसेरा। ऐथै बूझै सो आप पछाणै, हर प्रभ है तिसकेरा। सतगुर सदा दयाल है पाई, विण भागा क्या पाई है, एक नदर कर वेखै सब उपर, जेहा पाओ तेहा फल पाई है। नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाई है। सोरठ महला तीजा चौथके, सच्ची भगत सतगुर ते होवै, सच्ची हिरदय बाणी, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, हम मैं शब्द समाणी। बिन गुर साचे भगत ना होवी, होर भूली फिरै आणी, मनमुख फिरै।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सह सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किरबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम।

आपे लेखने आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम यो महा अनजन अनद होवै वडभागी लै गुर पूरै हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़िया मराइंदा प्यारा कर बालक रूप चाहा। आप अखाड़ा पाइंदा प्यारा कर वेखै आप चुजाहा कर बालक रूप पाइंदा प्यारा चंडूर कंस केस माराहा। आपे ही बल आप है प्यारा बल भन्ने मूर्ख मुगदाहा सब आपे जगतो पाइंदा प्यारा वस आपे जुगत हथाहा। गल जेवड़ी आपे पाइंदा प्यारा ज्यों प्रभ खिंचै त्यों जाहा जो गर्भ सो पचसी प्यारे जप नानक भगत समाहा। सोरठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मनमुख कर्म करे हंकारी साधु परसत ही प्रपाया गोविंद शरण तुम्हारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत्संग पए साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी रहाओ। तू हृदय गुप्त वसै दिन राती तेरा पाओ न बुझै गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावै गुण विचारी गुरमुख प्रगास पया सांत आई। दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी। पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिन कौ कृपा पही तुम्हारी। नानक्या तोल सहज सुख पाया आंदन जागत रह बनवारी। सोरठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन न जाई। ज्यो मछली बिन नीर बिन सै त्यो नाम बिन मर जाई। मेरे प्रभ कृपा जल देव हरनाई हाउ अंतर नाम मंगा दिन राती नाम ही सांत पाई रहाओ। ज्यो चात्रक जल बिन बिललावै बिन जल प्यास ना जाई। गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुबाई। मनमुख भूखे दह दिस डोलै बिन नावै दुख पाई। जन्म रै फिर जोनी आवै दरगै मिलै सजाई। कृपा करै ता हर गुण गावै हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा अचर चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन पीतर ता भ्रम काटे आ जाई। मेरे गोविंद अपने जन कौ देह वड़ियाई। गुरमत राम नाम प्रगसो सदा रहो सरनाई रहाओ। एहो संसार सब आवन जाना मन मूर्ख चेत्या जाना हर जियो कृपा करो गुरमेलो ता हर नाम समाणा। जिसकी वथ सोई प्रभ जाने जिसनो दे सो पाए वस्तानूप तगमा गोचर गुरपूरा लख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने गुंगे की मठियाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखै लुकाई। सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करै सो पाए जन नानक अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवां कर पहला ते तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद। किस हों जाची किस आरादी जा सब को कीता होसी। जो जो दिसै वड़ा वडेरा सो सो खाकूरल सी। निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख नमने देसी। हर जियो तेरी दाती राजा
मानस बपड़ा क्या सालाही, क्या तिसका मोहताजा रहाओ। जिन हर त्याया सब के तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुखदात है, निखुट न कभी जाई, अनंत भया सुख सह इस माने, सदगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, आन दिन नाम वखाणी, उपदेश सुन साध संतन का, सब चुकी कान जमाणी। जिन कहो कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, जो पिता पूत कृपाला, सोरठ महला पंजवा, कर पहला चौतुके, गुरु गोविंद सलाहिया पाई, मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै पाई, एहा करनी सार। जित तन नाम न उपजै पाई, से तन होए शार, साध संगत कौ वारिया पाई, जिन एक अंकार आधार। सोई साचा राधना पाई, जिसते सब किश होए, गुर पूरै जान आया पाई, तिस बिन अवर ना कोए रहाओ। नाम होने पच मोए पाई, गणत ना जाए गणी, विण सच सोच ना पाईए पाई, साचा अगम तनी। आवन जान न चुकई पाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा पाई, दे नाम एक कणी, सिमरत शास्त्र सोधिया पाई, विण सतगुर परम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सोधिया पाई, विण सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया पाई, हर हर नाम ते आए, सच सदा है निर्मला पाई, निर्मल साचे सोए, नदर करे जिसे अपनी पाई, तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाईए पाई, विरला कोई कोए, नानक रता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए, सोरठ

ऐसी देह बुझाई से वो साध गहो ओठ चरना न बिस्रय मोहत छसाई रहाओ। अरे मन मुग्ध्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई। प्राण पत त्याग अंतू रचिया उर्ज्यो संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुध पाई। साकत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मानो कहना कछु ना जाई। जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता। माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी। सब मिथ्या असनेही रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ। तीन संगिया कर देही कीनी जल कूकर पस में ही। होए आमरो ग्रे मैं बैठा करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही। टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावो दिन रहने ही। जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेटियो वट भागी। मने भया परगासा कोय ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार। आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा। निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचरज शोभा कारज आया रासे। नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेखे सब सुखिया। रोगी कै भाण सब रोगी करण करावन हार स्वामी। अपना हाथ संजो

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाउ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाहीं बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। संतन बिनु अवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अना

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवा कर दूजा, मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर।

कीते कहो मेरा सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगमे अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मा दे। सोरठ महला पंजवां, जे

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई।

मन बाँथ फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आग्ञा मुखी उज्जल मिट गए अमन जाने निर्भव भय हृदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावै दुख दर्द भ्रम पागा कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुरचरणी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन शाड कौडी संग लागे जाते कछु ना पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदाते आई है सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची देह अज्ञानी रहाओ मृग तृष्णा अर सुपर मनोरथ ताकि कछ ना वडाई राम भजन बिन कामना आवस संग न काहू जाई हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा जी को काम न कीना तावत तावत नह त्रिपतासिया राम नाम नहीं चीना साध बेकार बिखै रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रपाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम यगन को सागर साधु संग उदारे पूरे गुर मेट्यो परमान देरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मंतन रहे अगाई जत कत पूर रहे हो परमेश्वर कत आवै कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा कहो नानक प्रभ कृपा धारी मंतन भय बिगासा सोरठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुरु होवा आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज भई बढ़ाई रहाओ गुर की शरण पए पै नासे साची दरगह माने गुण गावत आराधना हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सवारी गोसट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सदगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निदान।

गुरपुरे की अचरज वड़ियाई, नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवा, संचन करो नाम तन निर्मल, थाती अगम अपार, बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सच बोइथ। चढ़ लंगो बिक संसार, रहाओ पय कृपाल, पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो, नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरै अपनी कल तारी, सब घट उपजी दया, आपे मेल वडाई किन्नी, कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म जब सदा निहाल, रहाओ अंतर बार थान थनंतर, जतगत पेखो सोई, नानक गुर पायो वड भागी, तिस जेवड़ अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवा, सुख मंगल कल्याण सहज तुन, प्रभ के चरण निहारिया। रख न हारे राख्यो बारक, सतगुर ताप उतारिया, उबरे सतगुर की शरण आई, जाकी सेवना बिरथी जाई, रहाओ। घर मैं सुख बाहर फुन सुखा, प्रभ अपने पहे दयाला, नानक बिघन लागे को, मेरा प्रभ होवा कृपाला। सोरठ महला पंजवा, साधु संग भया मन उद्दम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता, सिमरिया नंता, सागर तरिया पाई। हिरदय हर के चरण वसाई, सुख पाया सहज तन उपजी, रोगा कान मिटाई, रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना, कीमत कहन न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना प्रभया सहाई। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी, आठ पहरे आरा दो स्वामी, पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख लहो भाई मेरे कहो, प्रभ आगे अरदास, रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ, अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुरपुरा भेटियो, मिटियो सगलियां देसा। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपुरा सुखदाता, करण कारण समर्थ स्वामी, पूर्ण पुरख विधाता, रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने, सदा सदा रंग माण। साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरै, हुई सर्ब कल्याण, रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा, दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली, रहाओ। पत ते उदाहरण।

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास कौ कंठ लाए राखे जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आ गै चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई।

तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चितराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों घर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन न जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर तिहाई आन दिन।

संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, कोट जन्म के किल बिखना से हर चरण चितलाए। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी, जी जंत सा पय पवित्रा सदगुर की सच साखी। बिघन बिनाशन सब दुख नाशन सदगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला। सब जी पय दयाला जप अनद

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाय सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन हो

मिल साधु दुर्मत खोए, पदत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते, सब लाथे पाप कमाते, गुण गोबिंद नित गाइए, साध संग मिल त्याइए, मन बाइत फल पाए, गुरपुरा हृदय त्याए, गुर गोपाल आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया, प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा, दह दिस छतर मेघ कटा घट, दामन चमक डरायो, सेज अकेली नींद नौ नैना, पिर पर दे सिदायो, हुन नहीं संदेसरो मायो, एक कोसरो सिद्ध करत लाल, तब चतर पात्रो आयो रहाओ, क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो, मंदर चरके पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो, हाँ हाँ पीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पां बीरी के पात पर दो, बिन पेखे दूर आयो, पयो कृपाल सर्व को ठाकरो, सगरो दुख मिटायो, कहो नानक कहो मैं पीत गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो, सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो, सर्व गुणा निदरायो, रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया तारी, नाम पर्यो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी,

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरियंत्र जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे। गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे राम नाम मन लागा जमल जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ता की सेवना बिरथी जासी अनंद करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो तिस बिन अवरना कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कारज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगै को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवा,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहेब स्यो मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकी सरनी पाई है। दर्शन पेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की सरनाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हर अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहु बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल पयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो ने असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर ने छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना ने कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख ना हिये बसावै। पर तन परधारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागयो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सगल पै भंजन जस्ता को बिसरायो। सुवान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो। सोर

लोभ मोह अवमानना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्याग, जगते रह निरासा, काम क्रोध जे परस नाहनो, ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर कौ कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सभी संग छाड़त, को न आवत नेरै।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साचया पूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुड़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुड़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नू प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगता नु जम जोहे न साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद सब भगता चरनी लागी, गुर कै सहे सुबाई। मन मुखा नु प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी।

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हर आप वसै मन आए फिर का हुक्म ना जा नहीं पाई साकुलखणी कुनार मन अठकार।

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिसरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्मया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखां को ना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखां नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा, से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए, जे अभिमान करे बेकार मनमुख आप सुवारथी कारज ना सके सुवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमें लेखा मंगिए फिर आवै जाया, जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया बिना मैं जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया। महला तीजा, कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिक संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है,
कहो कित बिद पाई है तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है गुर पूरा वे खा लिया गुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा ज्यो तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी डेह जियो वन्य चौखनी है सच्चे संदड़े नेह नानक मेल न चुकई राती अतैडेह महला तीजा सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग न उतरै ब्याह न लगे के हे पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवा अपना हाँ तन बलिहार है जाओ महला तीजा मनमुख मान्या जित है दूजे लगे जाए तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाद लगाए एहो मन वस नाया वही थके कर्म कुमाए पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए मन की सार न जाननी हम मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड़ भाग वस्या मन आए पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सदगुर मिले नाहो पाया नानक सुख समाए पौड़ी एह पूप तराने रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग सुंब खिन मैं ले जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप ले जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना श्लोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श लेहे सब दे मेल मिलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ ज्यों छुट्टड़ कर कर फिरै दो चारण बदनाओ नानक गुरमुख बख्शीऐ से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो सेवै सत मुरार से भवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया से दरगै पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर से वैसे ही पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया श्लोक महला तीजा थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ति है पाईए मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार एह मुदामणी क्यों विचों कढ़िए सदा रखिए और तार एह मुदामणी सतगुरु पाई गुर सिखां लद्दी पाल नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर से चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए नानक विण कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी बह सखिया जस गावे गावन हारिया
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਤਿੰਨ ਡਰ ਸੱਟ ਕਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆਸਾ ਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵੈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਟ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਬਿਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਬਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾਇਆ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤਿਸ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ
बलिहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना। राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परे ओ काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी। कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई, ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता, मिले ओ जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी, क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया, मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, औरन पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई, कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सर तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पवसागर तार मुरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर तन लियावै सुदारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना की जय अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पवने सुख बनया किस जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाउ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तुलाई ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लबो एक नाव तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर जय अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै शंशारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछले नामा का पहचान शवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दहाओ मोको बेडी देहो बताई हो रिबाई बेडी देन न जाई देख बेडी रे उस माई हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ बेडी प्रीत मजूरी मांगे जौ को शान शवावे हो लोग को टंब सबोते तोरे तो अपन बेडी आवे हो ऐसो बेडी बर्न ना सको सब यंत्र सब ठाई हो गुंगे महा अमृत रस चाखिया पूछे कह न जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई जल्द बांतु था प्यो हो नामे के स्वामी सी बहोरी लंकप भीखण आ प्यो हो सोरठ करती जा अड़मड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै।

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके। चार पदार्थ अष्ट महा अष्ट दशा सिद्ध नवनिर करतलता के। हर हर हरना जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बिद चौतीस अखर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़ै पाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी। जाओ तुम गिरवर तव हम मोरा जाओ तुम चंद तव हम भय है चकोरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ। जाओ तुम दीवरा तव हम बाती जाओ तुम तीर्थ तव हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटै जम फासा भगत हेत गावै रविदासा। जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होए गो।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक इंद नहीं त्रपै बिनहर कहाँ आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपार मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उस तां की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम, जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदनह पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहु मनुआ, बहु ना कतहु तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री

जा कै संग तेरे बंधन छूटै, गहो पार ब्रह्म शरण, हृदय कमल चरण, अवरे आस कछ पटल ना कीजै। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई ना।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ, चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके, एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल।

मीत साजन सर्व गुण नायको सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंतन राम नाम हितकारे। सुख सहज आनंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कथूं जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

आओ वड़े भाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे।

आव कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया मैं बरतै, आपा पशु ना बूजै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूजै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जानै, ता को अचरज काहो, ज्यों जल जल मैं पैस ना निकसै, त्यों टुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा, जाओ तन काशी तजै कबीरार, मैया कहा निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मग मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोकै जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले का हूं डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहाओ।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृस्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण। साल बिसाल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मत तत् कढ़ाए, जप नाम रतनयो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभावै, गुण नानक नाम्यो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा धार मधसूदन, मिल सत संग यो महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावै गुण बोलै बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोल अत भारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख

देहो संदेशरो कहियो प्रे कहियो विषम भई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लिखिए सुहागन सात बुझहियो सर्व निवासी कटकट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत सरी महला पंजवां।

बेसुमार बेअंत बड़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ। दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई। एकै रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई। तिनकै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप। अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप। अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप। जैत सरी महला पंजवा कोई जान हर

श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवां वार।

मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना विनाशन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करन मिया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जला मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माणे जिस संग तै स्यो लाइए ने हो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन महरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीन नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरतया पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिन ग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ति मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साईं जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सह त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राजरस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसनं अर चंत मूड़ अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदै ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जिलते पृथ्वी नव खंडणै बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौत कोट तमासया चेतना आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की भुल तुम्मा जिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीऐ सलोक नच राज सुख मिष्टंग नच भोग रस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शनंग लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कछु ना लग गई भगतन कौ मीठा यान सुआ सौ फीकिया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादंग अलबंधन कुसुम बसन चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुख डे गाऊ पलक छड़ियाना डे उचित जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन

नाद कुरंग कै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्स मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख लेवो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पे दया।

चंत नानक दयाल पुरख कृपा करै, हिक सेवी हिक समला, हर एक सपै अरदास, नाम वखर तन संचया, नानक सच्ची रास पौड़ी। प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो, सब किश आपे आप, दूजा कहां के हो। आप करो प्रभदान आपे आप ले हो, आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुद थे हो। नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो, जय श्री बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ कछु ना जानो, मन माया के हाथ बिकानो रहाओ। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलजो के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारयो, पल पल हर जीते अंतर पारयो। जत देखो तत दुख की रासी, अजो ना पते आए निगम पहे साखी। गोतम नार उमा पत स्वामी, सीस धरन सहस पग गामी। इन दूतन खल बद कर मारयो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारयो। कह रवदास कहां कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण कहां की लीजै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त वजूनी सह भंग गुर प्रसाद। राग टोडी महला चौथा कर पहला, हर बिन रह न सके मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न पवजल फेरा रहाओ। मेरा हीर है लोच लगी प्रभ केरी, हर नैनो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दिरलाया, हर पादर हर प्रभ केरा। हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा। हर हृदय मंतन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोभ विकार जिन्ना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा। कोई मनमुख मूड अज्ञानी कही है, तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लखेरा। टोडी महला पंजवा कर पहला, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संतन अवरना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाक स्वामी रहाओ। ऊच समाना ठाकर तेरो, अवरना काहू तानी। ऐसो अमर मिलो भगतन को, राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। निरपा होए रहे लवेक, नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुवारी, ताको तोखा कहां ब्यापै, जाको ओढ़ तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावै, अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए, जा को कृपा तारी। सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा, चौपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मन दै दिस तायो, माया मगन स्वाद लो मोहयो। तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत नाहि मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर गृह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ तावै बहु पाती, जो तेली बल्द परमायो। नामदान इस नान ना कियो, एक निमख ना कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखियो, नह बुझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेवते आयो। पंच दूत रच संगत गोष्ठ, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वच्छल सुन आयो।
नानक भाग परयो हर पाछै राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक सा सिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन्य संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर आपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख बेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता तो मुसले शराया खेद पयो बेगारी न्याई कर कै काम न आया। पयो अनुग्रह जाको प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां किरपा निद बसुरद हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागै प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो महापत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तहारो पावो जो तू देहे तही एहो तृप्तै या नकत हूं तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगले रण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवां कर दूजा दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग ना चल मिले कृपा गुणगाम रहाओ। राज माला नेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहुविध कौतावे सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है नाम सिखाई सदा मेरा संग हर नाम मुको निस्तार है। बिखै बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संगार है इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरा पंडार है। टोडी महला पंजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग मुखी उजल मन निर्मल होई है तेरो रह इहां उहां लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा मने चरावो भोग छोड़ आपत बाद हंकारा मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा अवर ना करने जोग। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजै दूजी ठाहर हार परयो तौ द्वारी लेखा छोड़ा लेखा छूटै हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख्शिंदु सदा मेहरबाना सब ना दे आधारी नानक दास संत पाछै परयो राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायण सांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायण जन्म मरण दोहूं ते छूटे पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचारियो दास गोविंद परायण अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला

काल जाल जम जोहे ना साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सुबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलवख भरे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन को एक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नियाप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेरवाना दया तारी हरनाथ नानक शरण परे दुख पंजन जा कावड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परयो दरबारे कोट पराध खंडन के दाते तुझबिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुमा नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध

एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरै देखन कौ दर्शन प्रवनीत। बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत।

बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन की प्यास, एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते, अविनाशी बिमल जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा भेटे गुणतास। सांत सहज सूख मन उपजियो, कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवां, हर हर पद पावन, जी प्राण मान सुखदाता, अंतर जामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता, रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, करम भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा, आन बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवां, माई माया शाल, त्रिन की अगन में की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जाल। रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख देह का एहो उत्तम फल। वेद बखियान करत साधु जान, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन भय माल। टोडी महला पंजवां, माई चरण गुर मीठे, वड़े भाग देवै परमेसर, कोट फला दर्शन गुर डीठे। रहाओ गुण गावत्या चुत अविनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्त्र पए साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहजानंद होवै दिन राती, अंकर भलो हमारा। रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी, जां को अंत ना पारा वारा। कर गह काड लियो जन अपना, बिकसागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुना संकट द्वारा। नानक शरण गही स्वामी की, पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भोगवै, हर सिमरत बिन सह सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिखनासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख सरू पूर्ण पई आसा, दर्शन पेट उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। टोडी महला पंजवां, हर हर चरण हृदय और तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे। रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीर्त तत् विचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकर अगम्या पारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कश ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। टोडी महला नावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहो कहां अपनी अदमाई, उर्ज कनक कामनी के रस, नह कीर्त प्रभ गाई। रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै, ता स्यो रुच उपजाई। दीन बंद सिमर्यो ने कबहू, होत जो संग सहाई।
मगन रहो माया मैं निसदन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर। काय रे बक बाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम देवरा मैं जाना। कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पंडित नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के

दरियाओ तू देहांत तू बिस्यार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना आस पात गज पात नरै नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिये इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै।

अंतरवसै न बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै। ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए न विछड़ै जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरियां दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडै पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाउ देवै दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जां को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दर वाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए ज्योत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ आप वरताए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवै जोगवै, भोगी होवै खाए। तपिया होवै तप करे तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जै पाई, जे को बह अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। अगे पुछना हो वही जे सणनी सणे जाए। तैसो जैसा कांडिये जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਪਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, जो पावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने

तू करता सब किछे आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाना है, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विचहु मैं घर कमाई जिन किए तिसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ता का रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किछु ना होवै ज्यों हर पावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों पावै तिवें बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुगद नी जान जन नानक कहो हर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कत गयो ओ कत आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश कट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सत नाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवां कीता लोड़ै

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ताह मैं जाइयै। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै तायाणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सुही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अभमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लुकानी रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार पो अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिर सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभ ताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजनहा तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महला पावे कह तो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझे ना याना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन डीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना। रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै। गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सागत फिरता नीर बरोलै खप खप मरता। रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा लाल नरावे।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ जीवत मरत निहचर पावे थाओ सो साहो सेव जे टोट न आवे खात खर्चत सुख अंद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सुही महला पंजवा गुर पूरे जपे दयाल दुख बिन से पूर्ण पई काल पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न सकै तीने ताप निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे नानक मांगै दान प्यारे सूही महला पंजवां से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत।

दर्शन कौ लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत गसाई। निर्दय जंतु तिस दया ना पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार। जित हर बिसराए रहाओ, अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए, पाठ पटंबर बिरथिया जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई, तजा मान सरणी परो हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो, नानक तो प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया नै मरिया नै जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया बिखना किरिया। अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण।

जैसे पवन चुलाया, सुर सुन ही डराया, कर रोत हमराया, ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओर साधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा, भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सृजनहारा रहाओ, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूपया गम है, अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरिया, जा पाया गम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सुही महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा पाना, तू है मनाए, जिसनो होए दयाला, साई भगत जो तुद पावे।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर ली जै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, घटघट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभ अपने स्यों। जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे। जमता कै निर्णय आवै, जन्म जन्म का विछड़िया होवै। तन हर स्यों आन मिलावै, माया मोह परम पौ काटै। संत सरण जो आवै, जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णौ, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे।

आस चुकाई, मेरे राम राए तुद चित आया उबरे, तेरी टेक परभाषा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ, अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला, अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए, परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाता पेटिया सदगुर पूरा, सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै, ठाकुर रचन रचाया, मेरे राम राए मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ, गणती गणी न छूटे कतहूं काची दे आणी, कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली, जी जंत सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है, निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना, सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा, मेरे राम हर जन कह।

तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आए न सुख फल पाए न आठ पहरे आराधै, तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबर है बक्से बक्षण हार जियो अन को की जय मित्रा खाग रलाए मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

क्या मोह देसी अग्गै जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ यास जियो तै सह नालो मुती अस दुखां कू तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक।

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भव जल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह त्यानो नानक शरण पया हर द्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजिया

दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दय दसपुर रहया जा स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीमर खाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पव पवंजन अनहद वाजे तुनिया राम अनहद चुनकारे तत बिचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नामा राधे मैल सब काटे किलवे सगले खोवे तह जन्म न मरना आवन जाना बहुन न पाइये जोनिया नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इच पुनिया सूही महला पंजवा संता के कार्य आप खलोया हर कम करावने आया राम तरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दास वाई राम दास वाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगनो सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संतां की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अंदेनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध्य प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर।

जिस तू मिलै सो तुद मिलै सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह विए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख परतार। महला पहला। सूहा रंग सुपनै निसी, बिरता गे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी, सब बुरियाइयां शार पौड़ी। एहो जग आपो पायो न कर चोज विडान, पंच तात विच पाईआ न मोह झूठ गुमान। आवै जाय पवाई है मन मुख अज्ञान, एक नाया बुझायो न गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्शे हो न हर नाम निदान।

उड़ते कौ उड़ता, जीवते कौ जीवता मिले, मुए कौ मुआ। नानक सो सालाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच त्यायन से सच्चे गुर शब्द विचारी, हाँ मैं मार मन निर्मला हर नाम उतारी। कोठे मंडो माणिया लग पए गवारी, जिन किए तिसे ना जाननी मनमुख गोबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सच्चा, क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा, कामन तौ सिंगार कारो, जै पहला कंत मनाए, मत से जय कंत ना आवई एवै बिरथा जाए। कामन पिर मन मानिया तौ बनिया सिंगार, किया तौ परवान है जां सौ तरे प्यार। पाओ सिंगार तंबोल रस, भोजन पाओ करे, तन मन सौपे कंत कौ तौ नानक पो करे। महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस, ले तन किया सिंगार, सेजै कंत ना आयो एवै पया विकार। महला तीजा, तन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, तन पिर कहिए सोए। पौड़ी, पै बिन भगत ना होवई, नाम न लगे प्यार, सतगुर मिलिया पौ उपजै, पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग सिया, होमै तृष्णा मार, मन तन निर्मल अत सोहना, पेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब तिसदा, सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला, वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुंद सर, वेल वर्ष वराहो। आप खड़ोवै आप कर, आप पीना या पाहो, गुरमुख सेवा थाए पवै, उन मन तत कमाहो। मसक तलहो मजूरिया, मंग मंग खसम दराहो, नानक पुर दर वे प्रवाह, तव दरूणा नाहे को सच्चा वे प्रवाहो। महला पहला, उज्जल मोती सोहने, रत्ना नाल जुड़न, तिन जन वैरी नानका, जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी, हर साला ही सदा सदा, तन मन सौप शरीर, गुर सबदी सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हिरदै रव रहया, हर हीरा हीर, जन्म मरण का दुख गया, फिर पवै ना फीर। नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला, नानक हो तन जाल, जिन जलिया नाम विसारिया, पौंदी जाए पराल, पिछे हथ ना अंबड़ै, तित निवंदै ताल। महला पहला, नानक मन के काम, फिटिया गणत ना आवही, किती लहा साम, जा बख्से ता तक्का नहीं। पौड़ी, सच्चा अमर चलायो, न कर सच फुरमान, सदा निःचल रव रहया सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेवी, सच शब्द निशान, पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान। आगमा गोचर लख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला, नानक बदरा मालका।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जान है पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो राओ, बावल होई सो सहलो राओ, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहण न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई। जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किश होवा सब किश तुझते तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतराई। क्या हूं कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई। भगत हीण नाक जे होएगा ता खसम नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस्कलंदर कठी तीर्थ नावा। एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बाहुड़ जन्म ना आवा।

अगम गोचर लख्य पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवर ना सूझे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दा

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे परम पुलाने से मनमुख कहिए नारो वार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तसे आए सब सच दिखा ले ता सच समाए आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवको सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंदन लागे सही ध्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तवै कोई चाले जो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करमे दे वड़े आई एक परम पवे अभमाना बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़े आई मत को तरो गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमे कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आ वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए ओ रंग कदे न उतरे साज समाए अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवरना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसर वेखै
बहु न मरै न जंपे खै कर ही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वडियाई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना ज्यो नठुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना ओह ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरखिया जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाईए होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सहमा ओए फिर जोन पवाईए मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़करमा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरे सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोहचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सवरैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यो पाव चितवीए बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी।
हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानके प्रभ करते स्वामी जो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोत्तम अंधन अंध आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बदक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे सेव दरे वडभागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यों राखै तवै रहंदे राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा उथिर से हर सोग ते रह निरारा सिरी उपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर भयंगा हम पचे दीपक देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावै जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया हर का मंदिर तिसमै लाल गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल जिन चाखिया तिस आया साद जो गूंगा मन मैं मिसमाद आनंद रूप सब नजरी आया जन नानक हर गुण अक्स माया बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव तरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाकावड़ प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रतपाले बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जंपीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसै प्रभ का नाम मंतन आधार बिसरत नाम होव तनशार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तने अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा जानड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे राखण कौ तुम एक रहाओ सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला
ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧੈ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਰਾਧੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਟਿਐ ਪਿਆਰੇ ਚੁਕੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਊਚ ਅਪਾਰ

कने रे पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा शक्ति काई सादा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंगौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया तन तन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागनी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो न मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचर्ज अचर्ज से मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बणजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपै सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपै जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है।

निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदे एको वंकार। सतगुर प्रसाद कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान। रहाओ अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, सांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ ताप पाप संता बिनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत आओद, फाही फाथा जम कै जाल।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौनाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोखा मारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दुपदे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बाल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुलिया नूपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हो तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रिया पारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जहां से राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बखैठ गौरी खावत है। तरण को मंदिर साज सवार हो पावक तले जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने अधारो। चीत चितवाओ जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर्ण रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोझ पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण ना साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन ना जाई। जह जह देखा तै रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विदिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, उतकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना साको, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ, अन बोले कौ तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिय रहाओ, जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यो बाद उठरी है, नानकारा खाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ, काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ, एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कश खीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ,

परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवां, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, अगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिये नित सरणी, गुर ते पाइए हो निदान, जन मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान, कहो नानक ता की सरनाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मूल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर ताके, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरै हिये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समरथ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगै, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास है। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। रहाओ काढ़ कुठार खसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आवर्तै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाओ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान। बिलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जग अंतर पार ब्रह्म मेरो तारण तरण रहाओ। विश्वंपर पूर्ण सुखदाता सगल समग्री पोखन परन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बिलावल महला पंजवां दोपदे कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा गै निर्गुण युगै सरगुण तेल करत बिच स्वामी मेरा रहाओ। नगर मैं आप बाहर फुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकर कह कह चेरा। का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जै जै पेखो तै तै नेरा साध मूर्त गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बिलावल महला पंजवां तुम समर्था कारण करन टाकन टाक गोविंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरण। रहाओ जो जो कीनो सो तुम जानेओ पेख्यो ठौर नाही कछ टीठ मुकरन। बड़ प्रताप सुन्यो प्रभ तुमरो कोट अग्गा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सद पूलन तुमरो बिरद पथ त्यो धरन। करना मैं कृपाल कृपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन। बिलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतै चरण हमारो माथा नैन दर्शन तूर परो रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच निवारो ठाकर सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पलमा न पावन दुबदा दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवां ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो उठन बैठन जन कै संगा जन चर राज मुख माथे लागी आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। जन की तूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवां ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुंच ना सको तुमरी काल तुमरी गतमित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी अन बोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारो नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवां राग सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जल त्यगन मैं जने आपो धारे करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निर्दान नानक हर सेवा अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवां अपने सेवको कबो ना बिसारो उरला गोस्वामी प्र मेरे पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो हमरे दुख हृदय मत तारो जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो जन नानक प्यास चरण कमलन की पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवां
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਕੁਸਲ ਪਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਮਿਟ ਗਇਆ, ਸਾਂਤ ਸਹਿਜਿਆ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਹੋਏ ਖਇਆ, ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੁਲ ਬਡਾਈ ਅਚੁਤ ਬਨਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਉਚਰੈ ਹਰ ਕੀ ਜਾਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਨ ਪੈ ਭਗਤੀ ਧਰਨ ਕੈਸੇ, ਕਰੋ ਨਗਰੋ ਭਗਤ ਉਧਾਰਨ, ਰਾਖ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ ਰਹਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਫਿਰਤ ਮਦ ਮਾਵਤ, ਬਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਸਵਾਨ ਜੈਸੇ, ਆਉਦ ਬਿਹਾਵਤ ਅਧਿਕ ਮੁਹਾਵਤ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਤ ਬੁੱਢੇ ਐਸੇ, ਸਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਮਣ ਜੈਸੇ, ਕੇਸਵ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਅਗ ਖੰਡਨ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਦਰਸ ਦਿਸੇ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ।

तन तन कलातो सब देख अब महन्ना, बिन नावे किछ संग ना जाना रहाओ, कीचे रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पस मै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुखथिया, सूकर सुवान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाई है, बंधन बांध्या आई जाई है, गुर सेवा तेल है पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दर सोए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ मान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरौ दस द्वार है जाके, अहनिसो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिरले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਵਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਪਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਈਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਐਤ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਊ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर भवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत न आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण भरै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हाँ आकल बिकल पई गुर देखे। हाँ लोट पोट होए पैया रहाओ, हाँ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हर कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। ज्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हाँ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हाँ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकर। महल ना पावै मन मुख भरमैया, गुर गुर कर तो शरण जे आवै। प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया, कर कर क्रिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लोबैया, बेसवै का बेसवा कै घर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठागर कृपा तारी। बहां पकर नानक कढ लैया।
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਨ ਸਰਨ ਗਹੀ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਹਉ ਜਾਉ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ ਤਜ ਆਨ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਿਣ ਮਲ ਪਾਪ ਕਲ ਮਲ ਦਹਿਨ ਚੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਰ ਪੈਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਏ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਐ ਬਿਸਮਾਦ ਚਖ ਅਨੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਦ ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ ਇਤਯੂਤ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ ਤੇ ਨਾਹੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ ਤੇ ਜਮਨਾ ਪੇਖੈ ਨੈਨ ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ ਹਰ ਸਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ

गुरमुख फिर चीना राम बाहा पकड़ो तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सकौ प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पै पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन अड़े अपने राम संगे से लोइन नीके राम प्रपेक्त इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस पीके राम नानक जल जलै समाया ज्योति ज्योत मी के राम बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुरमस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हार एक निमख कड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहने जान लागै सहि त्यान राग नाद छोड़ हर सेवियै तां दरगै पाइयै मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप या गम है सब तो देव पाया तू आपे वरदा सब जग सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतो दिन सरात अंतले छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वई मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना हो वई पार ब्रह्म ना पाया जाए मन अठ कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सिसों लिवलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुर पाए सतसंगति बह पाओ करो सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हरे आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार हर सब ना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवै चाड़ सलोक महला तीजा।

ज्योति ज्योत में लाए इस जुग में, विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाए महला तीजा। सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द ना लगो पाओ, हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे, फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है। जिसनो आपे लय मिलाए, नानक नदरी नदर करे, ता नाम तन पल्ले पाए पौड़ी। सब वड्याइया हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की कीचै, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लै जाई है, जिस पूर्व होवै लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरे प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है, जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए। हर रस पी संतोख होवा, सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए। सचो दै दस पसरिया, गुर कै सहे सुवाए। नानक जिन अंदर सच है, से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नदर करे, मानस ते देवते पए। सच्ची भगत जिस दे, हाँ मैं मार मिलायन, गुर कै शब्द सोचे। नानक सहज मिल रहे, नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई, हर करतै आप वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन, ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवे किस ही दी, क्या होवे किस ही की चख मारी, जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावे, सा नित नित चढ़े सवाई, सब चख चख मरे लोकाई। सलोक महला तीजा, त्रिग एह आसा दूजे भाव की, जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागया, नाम विसार दुख पाए। मनमुख अज्ञानी अंधले, जन्म मरे फिरे आवे जाए। कार्य सिद्ध न होवनी, अंत गया पछताए। जिस कर्म होवे तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम ते आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा, आसा मनसा जग मोहनी, जिन मोया संसार। सब को जम के चीरे विच है, जेता सब आकार। हुक्मी ही जम लगदा, सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर, जां छोड़ै हंकार। आसा मनसा मारे निराश होए, गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं, तिथे हर साई। अगै सब आपे वरतदा, हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी, सच भगत वड्याई। सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंद कशाई। जन नानक साचा राधया, गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्रभस करे। ओ पावा सिरे ओ पाओ है, नाउ प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है, हृदय सदा सुख होए। अमृत खाना पहनना, नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, पाए गुणी निदान। सुखदाता तेरे मन वसै, हमें जाय मान। नानक नदरी पाई है, अमृत गुणी निधान पौड़ी। जितने पात सहा, सहा राजे खान, उमराव सिकदार है। तितने सब हर के किए, जो किश हर करावे सो ओए करे। सब हर के अर्थी ए, सो वैसा हर सबना का, प्रभ सतगुर केवल है। तिन सब वर्ण चारे खानी, सब सृष्ट गोले कर।
ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਦੀਏ। ਹਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਸਮਾਰ ਕਢੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਦੁੱਖ ਵਰਤੈ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੰਪੋ ਭਾਗੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਜਾਈ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਨਿਤਮਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੂਤੇ ਕਬੋ ਨਾ ਜਾਗੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव निद ताकै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रभासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो तन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो एहो छूटन का साचा प्रभासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हर या वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साहा उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान। जो हर महल पावे गुरबचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

जंत अपने कौ दीजै हाथ राओ। सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति

ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखै राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महान रूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महा माया तां की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गत मित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कह बलहार है जाओ। संतन कह संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए। राम जपत कछु बिघन ना लागे, राम जपत कछु बिघन ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौ

कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूर्त सफल जा की सेव अंतरजामी पुरख विदाता आठ पहर नाम रंग राता गुरु गोबिंद गुरु गोपाल अपने दास कौ रखनहार रहाओ पातशाह शाह उमराओ पति आए दुष्ट अहंकारी मार पचाए निंदक कै मुख की नो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपै गुरुदेव भगवंत संगत।

सास सास जनसदास लाहे पार ब्रह्म गुर बेपरवाहे सगल भय मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब तरण जन की निंदा करे ना कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पहर जन एक ते आए जमुआ ता कह निपट ना जाए जन निरवैर निंदक अहंकारी जन पल माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सतगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए नीत अरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा रखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कही है मिले असंत मष्ट कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी बोलत बोलत बड़े बेकारा बिन बोले क्या करे बिचारा कहो कबीर शुशा।

वारै अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे, राग गोंड।

देख इस मरते कौ जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे नाम अंश। गोंड टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सरचंड बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नाग।

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारते हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओशा रोडावै हाउ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

दास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिर था जावै साध का निंदक।

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

कोई पड़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना कोई नाम जपै जप माली लागै तसै त्याना अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसै बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवै अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर घट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रहै,

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत आयो मरिय, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संध मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध भेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइया एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ।

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन है मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नह बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवार रोरे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इउं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सूड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

जाके बंधन काटे राए, सो नर बहुर न जो नी पाए। जाके अंतर प्रगट्यो आप, ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पाले परया, सगल कुटुंब ओह जान लै तरया। ना किश भरम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा। जत कत देखो आप दयाल, कहो नानक प्रभ मिले रसाल। राम कली महला पंजवा, तांते छुटकी अपनी तारी। प्रभ की आग्या लगी प्यारी, जो किश करे सो मन मेरा मीठा। ता एहो अचरज नैनो डीठा, अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए। बुझ गई तृष्ण निवारी ममता, गुरपुरै लियो समझाए रहाओ। कर कृपा राख्यो गुर सरना, गुर पकराए हर के चरना। बीस बसुए जा मन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने। जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास। ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चाले एक है पाई। जा को गुर हर दिए सूखा, ताको बहुर न लागे दुखा। आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रतो रंग गोपाल। राम कली महला पंजवा, मुखते पड़ता टीका सहत। हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे। अपना कहया अपना कमावे, पंडित वेद विचार पंडित। मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ। आगे राख्यो साल गिराम, मन कीनो दे दिस विश्राम। तिलक चरावे पाई पाए, लोक पिचारा अंध कमाए। खट करमा आर आसन तोती, भागठ गृह पड़े नित पोथी। माला फेरे मंगे विभूत, एह बिद कोय न तरयो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उत्तरी माए। चतर वेद पूर्ण हरन आए, नानक तिसकी सरणी पाए। राम कली महला पंजवा, कोट बिघन नहीं आवे नेर। अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार। जाको माया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान। अनक जतन उवा कै सरंजाम रहाओ। करता राखे कीता कौन, कीरी जी तो सगला पवन। बेअंत महिमा ता की केतक बरन, बल बल जाइए ताके चरण। तिन ही किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया तिन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मात

हर की कथा सुनत पवित जिहवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम भाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेड़ न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोए। तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस कर्म। तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा। तुझ में दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ। आगे दरगह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए। दुर्मत बिनसै रचै हर नाए, चरण कमल स्यो लागी प्रीत। गुरपुरे की निर्मल रीत, पहो भागा निरपव मन बसै। अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे। पाया लाभ सच्चा तन लाहे, तोट न आवै अखुट भंडार। नानक भगत सो है हर द्वार। राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम। सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता। हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार। खात खर्च कष्ट तोट न आवै, अंत नहीं हर पारावार। रहाओ कीर्तन निर्मोल हीरा, आनंद गुणी गहीरा। अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा, मेहमा ना जाने बेद। ब्रह्मे नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत। परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने। सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव। खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल। आप बिछोरा आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए। अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी। सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप। नानक का प्रभ आपे आप, राम कली महला पंजवा। किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई। भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास। बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक। नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम। पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता। जिसे जनामे तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस। सगला राधे प्रभ गुणपास, नानक दास तेरे कुर्बान। बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा, राखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधे जंत। मिलिए प्रभ गुर मिलमंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ। रहाओ ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचा पार। सुमत सार जित हर समरी।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक शिक्षा प्राप्त करै। राम कली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै या मिटाए मलीजै अंदिन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

सगले साज करत जगदीश, ठगन हार अनठगदा ठग, बिन मखर फिर उठ लागे। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवा, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़े नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महा

दूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जा कै मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग, गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देह तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा रहाओ। एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

हाँ मैं जाए शब्द कर लही है रहाओ गण गण जोत कुकंडी कीनी पढ़े सुना मैं तत्न चीनी सब सही ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदव ना सगली शार ना वै तो वै पूजै सैला बिन हर रातो मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ वाचै वादना वेद विचार है आप डुबे क्यों पितरा तार है घट घट ब्रह्म चीन जन को ए सतगुर मिले ता सो जी होए गणत गणी है।

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्थाए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूजना होवी, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई। पह भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किश आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत्व बिचारी। आपे आप कराए

अवर न कर न जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसे श्री वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर न कोई राजा, करत पावस बरत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। किन्ही किया परवृत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंग मसादे, मोहे दीन हर हर आराधे।

बाबा पाई, कोई कह मैं तने पसारा, मोहे दिन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत्य कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दिन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्ही पेख बहुत हाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावै पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करै आचार सुकरणी, मोहे दिन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामै ओ मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करिया, माटी काले देहुरा करिया। उक्त जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्व मैं जंतु राखिया। राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहा। जिन दिए

राम कली महला पंजवां जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निहचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महाबिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधिया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपाओ काले अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपाओ सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता कौ दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारो जन मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्र राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समर्थ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो वरदाह जियो पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बिचारा कहो नानक जो प्रभ को पाणा तिस ही को प्रभ प्यारा मानो प्रभ मानो मेरे प्रभ का मानो जानो प्रभ जानो स्वामी सुगुण सुजानो
सूड़ सुजाना सत परदाना अमृत हर का नामा चाख्या गाने सारंग पाने जिनकै पाग मथाना तिन ही पाया तनै त्याया सगलत सह का मानो कहो नानक थिर तख्त निवासी सचित सह दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा अनहद तुनिए सोहेलड़ा अनहद वाजे सब दया गाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरै ना आवै जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिया कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खिन्ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उरतारी है उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा किल विखहरना नाम पुने चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जानई देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछानई मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या आनंद हरख सह साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्दा नाहद नित उठ गाई संतन कै किल विख सब दुख बिनासनो हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अम्यो पीजै रहन दिन सहारा दिया जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिया पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याय स्वामी नर हरै सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा प्रम्पो पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे अवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुनिया पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया राम कली महला पंजवा शंत सलोक चरण कमल सरणागति आनंद मंगल गुणगाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम शंत प्रभ विपत निवारणो तिस बने अवर ना कोय जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल मैयल सोए जियो
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨਸ ਭਾਗੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ, ਕਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕੋ ਦਿਨਸ ਰੈਣੀ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੈ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਸ਼ੰਤ ਪੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਚਿਤ ਪੁਰਖ ਏਕੋ, ਤਿਸੈ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕ ਮਿਲ ਲੀਨੇ, ਸਦਾ ਯਤਨ ਜਾਗਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਥਾਨ ਤਿਸਕਾ, ਤਨ ਜੋਮਨ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀਓ, ਸਦ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੈ ਨਿਦਾਨ। ਸ਼ੰਤ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਓ, ਇਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਓ ਦੀ ਜੈ, ਆਸ ਇਕ ਧਰਨੀ ਧਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾ ਸੋਹਾਗ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ

महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे ससन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुमते नाहीं दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्स पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना।

आए मानते आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पव जल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर शंत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीश्वर गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौआ देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओवंकार एक ओवंकार सतगुर प्रसाद ओवंकार ब्रह्मा उत्पत ओवंकार किया जिन चित ओवंकार सैल जुग पए ओवंकार वेद निर्मय ओवंकार शब्द उदरे ओवंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आपा जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया।

चेतन नित नीत चिंतित ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुखोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, धूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पही सिवाल। जापै आप प्रभु तेह लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरा तुद पावा, जा तू मेले ता तुझै समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहार जाओ, जो उसारे सो ढासी तिस बिन अवरना कोए, गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख न होए। हणा को मेरा किस गही ना को हुआ ना होगो, आमन जान में गुच्ची है दुबदा व्याप।

तुम्हारी। क्यों तत्तै अवगत पावे, गुरमुख लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता, कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, हुक्मे रहे समाई, पूरे गुरते साच कमावे, गत मित सबदे पाई। आद कहो बिस्माद विचार कथिया ले, सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले, कटकट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कारना करनी, सेवै सिखसो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै, जी जुगत सच जाणै सोई, आप मेट निराल मोहवै, अंतर साच जोगी कहियै सोई। अवगतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाणै, हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै, अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै, अंतर जाणै सर्वदया, नानक ता को मिलै वडाई, आप पछाणै सर्व जिया, साचो उपजै।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती साचै साजी तिसमै ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रहण आयर मह सब किश है, करमी पल्लै पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चलै तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हर रसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दसन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास, जन नानक करे कर

ज्यों बै संतर तात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए। नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए, महला तीजा। आराम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार। गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार। तिसनो रूप अत्यगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, सोभा वंती नार। मन मुख सिंगार ना जाननी, जासन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाए नी, अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार। चंगै मंदै आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोचिया, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए। तिन जमण मरण न चुकई, हम मैं विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यो चित लाया, सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना हो वई, ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह, होर तंदै सब तावै। आप नहीं चलिया चल है, होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई, गुरमुख सुख पावै। निज कर वासा पाई, सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। श्लोक महा

एहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माण है सदा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवरया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया रोवे दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवे। पांडव पए मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी भया। रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पढ़ाए कर कर मांगे भिखिया जाए। रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है आपे दे वड्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै। रतना परखण जाए रतना सार ना जानई। आवै आप लखाए महला दूजा। रतना केरी गुथली रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रहा दुहा रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका माणक बन जैसे। रतना सार न जानई अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਕਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक हर प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतो मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हौ तिस सेवी हौ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मेले प्रीतम मोहे गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग देखे आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियां नो सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियां नो सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करे जिस पत रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै जिसै जराए आप सो ही अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सद बलिहारै।

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जिहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

आओ तोरे प्रोसे मग हर बसयो मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगहर पायो फुन काशी बसे आई। जैसा मगहर तैसी काशी हम एक कर जानी। हम निरतन ज्यों हो तन पाया मरते फूट गुमानी। करे गुमान चुबै ते सूला को काढ़न कौ नाही। अजय सो चोब कौ बिलल बिलाते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो उरादे। हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। अब तव जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पिछानी। संता मानो दूता डाना एह कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार पाओ कया गए बदन पसार। रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारा तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे पग जाई। साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार। गुरदीनी बस कबीर कौ ले वो बस समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जन पाया थिरता का सुहाग। जेह मुख बेद गायत्री बिकसै। जेह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्रह्मन बिसर करै। जा कह पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कहै। काहे मेरे बामन हर ना कहै। राम ना बोले पांडे दोजक पर। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उधर पर। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक लै कूपर। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बने। रा हमरे राम नाम कहे उबरे बेद भरोसे पांडे डूमर। तरवर एक अनंत डार साखा पोह पत्र रस भरिया। एह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम प्रगासा गुरमुख बिर लै जानी। रहाओ पावर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया। सोरे मदे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया। कह कबीर हों ताका सेवक जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा हो तन सियो अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संजम गुरमुख भोगी। रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी सिंगी सुरत मिलाई। कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रखो रह निराल मताड़ी। कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया। पवनिद तरन तारण चिंता मन एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया। जिसकी पाओ भक्त ने साधी रहाओ। पार तानो पार तानो पारती निंदा पर अपवाद ना छूटे। आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे। जेह कर कथा हो त्यार संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मो माही। दया धर्म यार गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही।
दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वछर पैहारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी। जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बैकुंठ नहीं संसार निरपौ कै कर बजावै तूर अनहद बजै सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे।

68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पितर नाओगो, पंच सहाई जन की सोबा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समा।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेद जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तउ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै,

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना तीन बसाए कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे सबदा नाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत सीजै अमृत रस गगन अंतर भीजै एस कला जो जाने पे ओ पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हिरदय रह मनुआ उल्ट सुन महंगा है। जागत रह ना अलिया पख पांचो इंद्री बस कर रख गुर की साखी राखे चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म ना जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै चौ मुख दीवा जो द्वार पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नामे गुहै मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मन जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराधे, सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यों पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाचाओ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे, नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जपियो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पाप गे। तुमरी संगत हर

गुण गावै स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परि जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकै हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सकै हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुऐ बंदियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुणने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सरल उठे बो लहरी मिल सरल सरल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हम न जाही हर गहने हम बारक कौर दुस्त धारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जल निधर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल दुपाई दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृहो रे आप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हरे आवते की खबर गुर पाई मन तनो आनंदो आनंद पहे हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुनया कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिसको हौ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो निह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम हौ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवै
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਵੈ ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ਰੀਜਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਹੀ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पगर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सदगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कन हारे। साकत गौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै विख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्र मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मुचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास तो लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निध हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मो अस्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव या पार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिने था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंत मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर

कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेल श्री नारायण बिन बजावे गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राखे अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवै नामा पहने कामा को ठाकर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा संतूर नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर शबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे छत्र सराए चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुवारी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसै क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसाल तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए ही सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझै कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगै कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। ऐथै नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजिया नू आपे नजर करे। नानक नाम वड़ियाईया जय भावै तैं दे।

जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावे जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल्ले जावे जियो माया मोह

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख कट है हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनों कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जोगो चहो कुंट जानिया।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करे अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू भूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करे अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखै भोगै तबत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंघना पार ना परना जाए। काम क्रोध लो मोहे ब्यापेओ नेत्र रखे फिराए। सीसे उठावन ना

खोए खहड़ा परम मन का सदगुर सरनी जाए, कर्म जिस कौ तुरो लिखिया सोई कर कमाए, पाओ लागा गोबिंद स्यों काल पाई थाए, खेत मेरे जमया निखुट न कबहू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतहू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आ गाए, मारू महला पंजवां।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटह अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूध बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करने एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखै पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहा करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर उपर तब सुब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

नाम पदार्थ अमर है, हृदय मन वसाए, गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए, सोयना रूपा सब धात है, माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई, सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले, साचे रहे समाई, मारू महला पहला, हुक्म पया रहना नहीं, तुर फाटे चीरै, एहो मन अवगुण बांधिया, सौ देह शरीर है, पूरे गुरबख्साई है, सब गुणै फकीर है, क्यों रही है उठ चलना, बो शब्द विचारा, जिस तू मिले सो मिले, तुर हुक्म अपारा, रहा हो ज्यों तू राखै त्यों रहा, जो देह सो खाओ, ज्यो तू चलावे त्यों चलना, मुख अमृत नाओ, मेरे ठाकर हथ वडियाईया, मेले मन चाओ, कीता क्या सालाही है, कर देखै सोई, जिन किया सो मन वसै, मैं अवर ना कोई, सो साचा सालाही है, साची पत होई। पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप दोए संग में खुदिया जमकाला, विछोड़ा पौ विसरै पूरा रखवाला, जिनकी लेखै पत पवै से पूरे भाई, पूरे पूरी मत है सच्ची वड्याई, देंदे टोट ना आवई, लै लै थक पाई, खार समुंदर टंडोली है, इक मणिया पावै, दोए दिन चार सुहावना, माटी तसखावै, गुरसागर सत सेवी है, दे टोट ना आवै, मेरे प्रभावन से उजले सब मैल परिजै, मैला उजल तां थीऐ, पारस संग पीजै, वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै, पेखी हाथ न लभई तीर्थ नहीं दाने, पूछो बेद पणंतिया मूठी विणमाने, नानक कीमत सो करे पूरा गुर ज्ञाने, मारू महला पहला, मन मुख लहर कर तज विगूचे, अवरा के कर हेरै, गृह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै, दुरमत कुमन के रह, दिसंतर पवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा होए वधेरै, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उधर भरै जैसे टोरै, बाबा ऐसी रवतर वै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागे।

माया तारी कर मांगे जग प्रभु दय मन अंधे पतहारी परम कुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगना गुर बिन बूझे बाहर पुअर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे आठ सठ तीर्थ परम विगूचे क्यों मल तोपे पापे शानी खाक विभूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक न जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत यो है नाम न जपई क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभमाना मनवा डोले दे दस्तावे बिन रात आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिख पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म न बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी सिख करे कर शब्द ना चीने लंपट है बाजारी अंतर बिख बाहर ने प्राती ताजम करे खुवारी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचों आप गवाए शादन भोजन की आस न करे अचंत मिले सो पाए बके न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चित लाए आस निरास रह सन्यासी एक सो लिव लाए हर रस पीवे ता सांत आवे नीकर ताड़ी लाए मनुआ न डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नावरते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उतारी नाम बिना ने छूट स्नानक साची तर तू तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार भवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए अफरियो पार अफार टरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सवै सिर अहनिस दात समार करे चार पदार्थ लै जग जन्मया शिव शक्ति करवास धरे लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे इति उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कडम स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह हमें कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन तन बिन सहसा सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद भया जोबन तन खिसिया कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे सागत राम नारदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे ना भावे रखे ओ करे बिसरत नाम ऐसे दोख लागे जब मार समारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख ना मिटई जन्म मरे का को दोष धरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जाको हर प्रभ नजर करे ते निर्मल पुरख परंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन भाव करे हर जन गुर प्रधान दुआरे नानक तिन जन की रेण हरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मारू काफी महला पहला कर दूजा आवो वन्यो डुमनी किती मित्र करे ओ सातन टोई नाल है वाडी क्यों तीरे ओ
ਮਹਿੰਡਾ ਮਨ ਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਜ਼ਰ

ना जाना सियाणा सदा साहेब कै रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाणा एक है एक जो दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मने नाही नाओ। गुरद्वारे नाउ पाईए बिन सतगुर पल्लै ना पाए सतगुर कै भाणै मन वसै ता अहनस रह।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटै हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तौ छूटै नाही जौ सिंचै तौ पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना कीना है। मीत सखे के तेजग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण अंदन कीर्तन कीना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा कीना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत नकाई, हाँ मैं मार करो गुरसेवा, जन नानक।

जो जन्मे ते सर परमरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरे प्रभ की ए सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले गुरमुख शीर्ष नहा हे। नीके साचे के वापारी ससव दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले सब सच्चे ओ महा हे। काची समी तोटा आवै गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणे मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली आए गया दुखता है। दुख में जन्मै

आपे बख्श लहै सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तन धरती शब्द बीजया पारा, हर साचे सेती वणज व्यापारा। सच धन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लहै नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सधी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सोदना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हों मैं माया सूते, अपना कर ना संभालै अंत विगूते। पर निंदा करै बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा, एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जग काचा, गुरमती सदा सच सालाही। साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता, आपे लाए लय जग जीवन दाता। आपे बख्शे दे वड़े आई।